पर मैनू एक गल दसो, इस गल दे नाल मेरा की संबंध? ये गल दसो। ते गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्यार दे विच भिज के नेत्र बंद करके आखन लगे, बहादुर शाह ओ बुढ़ा बाबा कोई होर नहीं, वो तू ही हुई सी जो एक एक प्रसादे नू तरसदा रहिंदा सी, तू ही हुई सी। अज जन्म लैके सारी दुनिया ते राजा राज करदा है, किड्डे किड्डे नौकर चाकर तेरे अगे हाथ बन्नी खलोते ने, आ देख लै गुरु रामदास दियां रहमतां तेरे कोल अज तक नहीं मुकियां, अज तक नहीं मुकियां, पता नहीं किन्ना चिर तू खानियां ने, किन्ना होर सुख भोगना है, कौन जाने गुण तेरे चरणा ते डिग पिया, तेरी हो गया अज बहादुर शाह सतगुरु, तेरे गुणा नू कोई नहीं जान सकता, तेरिया रहमतां नू कोई नहीं जान सकता। सो सतसंगियो बख्शिश हो रही है, इसीलिए गुरसिख नू ए हुक्म है, तू पुन दान करदा रहा, तू गरीब दे मूंह दे विच पांदा रहा, जिथे धन कमा के अपने बच्चियां दे मुख पांदा है ना, गरीब दे मूंह विच भी पाया कर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की आख रहे ने, गोलक राखे ने जो शलका करे व्यापार, कहे गोविंद सिंह लाल जी भोगे नरक हजार। जेड़ा दसवंध नहीं ना कटदा वो जीवंदे जी भी नरक भोगदा है, उहदा सारा धन हॉस्पिटलां विच कचहरियां विच मुकदमियां विच ही लग जाता है, भोगे नरक हजार, हजारां नरक जीवंदे जी भोगदा है। नहीं बई, नेक कमाई करके किसे भुखे नू भोजन छका दिया कर, किसे तन दे नंगे नू कपड़ा पहना दिया कर, किसे गरीब दे बच्चे दी पढ़ाई दी जिम्मेवारी ले लिया कर, किसे गरीब नू किताबां ही ले दिया कर, किसे गरीब दी बच्ची दी शादी ते पैसे खर्च दिया कर। गुरु घर विच धन दी लोड़ है, उथे सेवा ला दिया कर। दसबंध कढ़न दे कई तरीके ने, कई तरीके ने, पर जरूर कढ़िया कर, कोई फर्क नहीं पैंदा। महीने दे विच 30 दिन ने, ते 2 दिन दी कमाई ला दिया कर गुरु लेखे, ते सतगुरु बख्शिया करेगा। बाबा नंद सिंह दी बख्शिश करदे सन, औखा वेला आ जावे ना ते कदी भी दसवंध नहीं रोकना चाहिदा। देखो बाबा जी दे किहो जे बचन ने, औखा वेला आ जावे कदी भी दसवंध ना रोको, फिर सौखा वेला छेती आ जाता है, सौखा वेला छेती आ जाता है। कौन जाने गुण तेरे, ऐ मेरे मालक तेरे गुणा नू कौन जान सकता है।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौपाई पुनराशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा पोपन ब्रे

हमरे दुष्ट सब तुम काब हो, आप हाथ दे मोह बचाव हो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिय, सब बैरन को वाद संगरिय। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारी तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दे मुझे उवरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जू करियो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्याप्त कोई अड़िल। सुने गुंग जो जाहि सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रहै, हो जो याकी एक बार चौपई को कह। चौपई संबत सत्रह है सहस पणि जय, अर्ध सहस पुन तीन कही जय। भाद्रव सुदी अष्टमी रववारा, तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा। स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री स्पान कृपा तुमरी कर, मैं न कहियो सब तो ही बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के

सतगुर के कब जन पल उने जो गावे पले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो हे बन आवे।

0: प्रभंगी परमात्मा समस्ति प्रभुते
1: रंतन बिनाने कलंकी स्वरूपे
0: नमो राजदेवेश्वर परम रूपे
1: नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे
0: नमो राजदेवेश्वर परम वृद्धे
1: नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे
0: नमो परमज्ञाता नमो लोकमाता
1: अपेक्षीय परमी अपोगी अपुक्ते
0: नमो जोग जोगेश्वरं परम युक्ते
1: नमो नारायणे क्रूर कर्मे
0: नमो प्रेत प्रेत देवेषु कर्मे
1: नमो राग
0: रूपे नमो नमो नमो नमो
1: नमो
0: नमो
1: दान दाने
0: मान मान
1: नमो
0: रोगे नमो संसनाने
1: नमो मंत्र मंत्रं नमो
0: यंत्र यंत्रं नमो नमो तंत्र तंत्रं
1: सच्चिदानंद सर्वं प्रणास्य
0: अनुपे अरूपे समस्त निवासी
1: सिद्धता बुद्धता प्रदकर्ता
0: अदो ऊर्ध्वार्धं अमं महत्ता
1: परम परमेश्वरं कोचपाल
0: सदा सर्वदा सदा सदा दयालु
1: चिंदी अपेदी नामंग कामं
0: समस्तो पराजी समस्त

0: namo rok roke namo sok soke
1: namo
0: sarv jitan namo sarv
1: vitan
0: namo sarv mantra namo sarv jantra
1: namo
0: sarv ranga trimangi anange
1: akhije
0: apije samastang prasije
1: palak sarupe kukarmang panna
0: sada sarvadal siddh nivasi
1: अमृत
0: कर्मे अब्रत कर्मे अखल जोगे
1: अखल तर मन अलग कर्म
0: सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं कुता सर्वं जुता सर्वं काले सर्वं पाले सर्व मान तिर मान देव पेव आगुदार जतर तंतर विराजे अतूत रूप प्रसाद आद पुरखदार मूर्त जो नाद सेख
1: जतर तंतर दिशा दिशा उठाए
0: जो राग सर्व मान सब मान से मानता है खेल खेला खेल खेला नाद को फ्रेक रूप ना जा पाछु जानिए के जेब
1: जन्म मरण बेहीन
0: चक्कर बक्कर फिरे चत्र चक मानिए पुतीन आ देव नाम गुरु थापे सबे जे थाप
1: परम रूप पुनीत मूरत पुरन पुरखा पार
0: सर्व विश्व जो संजंत रपदन हार तरम तरम सुपर रहता पुतला खपेस गर्भ कन्या दुष्ट पंजर मुखदाय काम गर्भ कन्या सर पंजर आज रूप सूत सर्व सर्व का एक सर्व को पिपार सर्व शास्त्र न जाने के रूप रंगो लेख कोच में प्राण शास्त्र न आवे बहुचित आसन अपांग उपमान आजान बाहु शाहान शाहु देवान देव उपमा महान रंकार रंकाल अनकाल गत में तपाल बन गन उदार अद्भुत प्रचंड में तखंड सर्वा बना जय अंदर बंद

0: अपंग
1: अजी जुली वाज है गनी मुल्की राज है
0: निरुकत स्वरूप है त्रि मुकत प्रभूत है
1: पर भुक्त प्रभा है संयुक्त सुधा है
0: सदैव स्वरूप है अपेति अनुप
1: समस्त पराज है सदा सर्व साज है
0: समस्त सलाम है सदैव अकाम है
1: निर्वाद स्वरूप है अगाध है अनूप है
0: उन आद रूपे अनाद स्वरूप
1: अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे
0: त्रिभंगन त्रिबादे अगंजे अगादे
1: सुमन सर्पागे सुसर्पानुरागे
0: त्रिभुगत स्वरूप है अछेज है अछूत है
1: नरकम प्रनाश है पृथुल प्रवास है
0: निरुक्त प्रभा है सदैवन सदा है
1: विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है
0: निरुक्त सदा है विपुक्त प्रभा है
1: अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है
0: चाचरी छंद अपांग है अनंग है अपेक है अलेख है
1: अपर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है
0: अजय है अभय है अपूत है अदूत है
1: अनाथ है उदास है अधंध है अबंध है
0: अभक्त है विरक्त
1: वाहेगुरु जी अभक्त है विरक्त है

0: सदैवन प्रकाशे
1: आनंद स्वरूपे अपंगम प्रभुते
0: परमातन परमाते सदा सर्वसाते
1: आकाश स्वरूपे निर्वात प्रभुते
0: अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे
1: नरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे
0: न पुत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे
1: न ताते न माते न जाते न पाते।

0: पीठ कर
1: अनबन अंत दाता महंत
0: बोल मना चंत प्रसाद करनाल है अरकाल है
1: खलखंडन है मैं मंडन है
0: जगदेश्वर है परमेश्वर है
1: तलकान है सर्ववारण है
0: चित्त के तरण है जग के कर
1: मन मान्या है जग जान्या है
0: सर्वंग पर है सर्वंकर है
1: सर्वाचर है सर्वनाश्य है
0: करनाकर है विश्वंबर है
1: सर्वेश्वर है जगदेश्वर है
0: ब्रह्मंडस है खलखंडस
1: है पाते पर है गुणाकर है
0: जप है थप्पा थप है
1: ता कृत है अमृतामृत है
0: अमृतामृत है करुणाकृत है
1: अत्ता कृत है तरनेत्रित है
0: अमितेश्वर है परमेश्वर है
1: अत्ता कृत है अमृतामृत है
0: अजपाकृत है अमृतामृत है
1: नरनायक है खलकायक है
0: विश्वंबर है करुणालय
1: निपनायक है सिरपा

0: शांत रूपे
1: नमो परम तन तन तन तन स्वरूपे
0: नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने
1: नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने
0: नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने
1: नमो भोज भोजे नमो

0: श्री भगवान की पाए कृपा उनके एक रति बिन एक रति के। तुरंग तुरंग से कूदल पौन के गौन को जात निवारे। गुंजत घोड़ गजान के सुंदर हिंसती है राज हजारे।
1: भगवान के भूपत कौन के ने नहीं जात बिचारे।
0: श्री पद श्री भगवान पदे बिन अंत को अंत के ताम सिदारे।
1: जमीन जबान
0: समान के
1: जति जदार सब विचार हजार।

0: निराचर भूत भविक भवान जपेंगे।
1: जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब था तपेंगे। सा समो प्रसन्न फिरे जल सतर सबे अवलोक जपेंगे।
0: जोंत्र लोक को राज करेंगे।
1: अनेक स्वयं साथ भरेंगे।
0: सर्विस अंत फसे जम।

0: सगरी लेत गाय चंबल आज गाज रूप से अंबल
1: दूषित
0: उद्वल पाता सकल मलेश करो रण गाता
1: ताकि
0: हो।

0: चरण हृदय त्याए अंतर आत्मे समाले
1: आप चढ़ सदावे पढ़ने गुरु नवर जाने कोए
0: कह नानक सुनो संतोषो सिख सन्मुख होए
1: देखो गुरु ते वे मुख होवे बिन सतगुरु मुक्त न पावे
0: पावे मुक्त न होर ते कोई पूछे विवेकिया जाए
1: अनेक जुनी भरमावे बिन सतगुरु मुक्त न पाए
0: मुक्त पाए लाग चरनी सतगुरु शब्द

0: माता के उदर में प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारिये। उसनु कहे पोह न सकी, जिसनु अपनी लिव लावे।
1: गुरमुख सदा संभालिये।
0: कहे नानक ए वरदाता, सो क्यों मनो विसारिये।
1: जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया।
0: माया अगन सब एको जेही करता खेल रचाया।
1: इस बाणा ता जमिया परवार पला पाया।
0: ए माया जितन विसरे मोह जे पाहु दूजा लाया। कहे नानक गुर प्रसादी, जिना लिवला की तिन्नी विचे माया पाया।
1: आप लगे मोह पाया जाए,
0: मोह पाया जाए किसे विटो रहे लोक बिल्लाए।
1: ऐसा सदु जे मिले तिसनों से सौपिए विचो आप जाए।
0: जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए।

सब तुम मात पिता हम बारिक तुम्हारी कृपा में कोई न जाने तुमरा ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुम ते हो सो तुम्हारी गात मेत बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निदया वै ताई सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा त्यंतर के बोलो जी पंजां प्यारियां जहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के निठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा त्यंतर के खालसा जी बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइयां चरखियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा त्यंतर के खालसा जी बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा त्यंतर के बोलो जी प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवै चितावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तां तां रचिया रहाए देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे इशनान चौंकियां झंडे बंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी सिखा दा मनीवा मत उची मत दा राखा वाहिगुरु हे अकाल पुरखा अपने पंथ दे सदा सहाय दा तार जी ओ श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है जी खुले

मन जीतै जग जीत, आदेश तिसै आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। सो कहो टल गुर सेवीऐ, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु के, जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसम दी। नूर अरसों कुरसों चटीऐ, तुद जिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटीऐ, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहंद साहो, जिस पास बैठिया सोही आए, सबना दा विसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।